आकाशवाणी इम्फाल नसे इराय नुमित इंगेल की तरह तरित निपान बा सगाब तलिसिंग मचमापल निफू निपान जुलाई कुंत्रा मथोय इंग लिसिंग अनी कुंतरुक हौजे अयु की पुंग मंगा मखाई ताखीबग लोइनना आकाशवाणी इम्फाल संगाई चैनल की थौरम संदोक पा हौजरी संदोक चरीबा मेगाहर्ट्ज चाम हुम दशमिक मंगा थौरम ताबीरीबा पुनमपु तारामना उक्चरी खुरुमजरी

धर्म संदोक्तों ने तहन जरिब ऐसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल लगेने हाउसिंग पंपा मसीदा लांथोक जरी सीधा ही दा नसी की सीधा ही दागता यंगंगी कानबा कंगमी नसे Yangang ase Manipur da Pak San fangi Yangang ase makhal kaya marum lai makhal sing adugi ahan bada silok yangang mayam na

0: Kadai nu nanggil lari tu boh. Ha, ini yang aku kadai nu.
1: Sida lari ni ni. Tu, sida gi, sida hau ni tu.
0: Oh, sida hau tu iba. Mau kik. Sida yang nungai jani he. Iba ni yang nungai no pa bayar ni.
1: Adu ni ni. Lari pa bah hau tu ni dah. Aku no mahanggi abra.
0: Ya ni hanguna. Kali lari dah. Ayuk tadi ayeng banung sitna liri liri sitli natra nung chane yak na chaji laktrengai da larik pa bagi kwai digi nungai ba matam oiri ne ba aduna khanga ba nepsika liri liri sitlatana ing basukaya ingra dana sa basukaya chatra dana aduna ne khoina ayuk ta larik che numi khudingi pari si akoi ta nate da mi loina mak ayuk ta loina larik pa ne ribanga ta ni Nang suyung ni, nampi yung bama tanda, nung sayang, nayak bama tanda. Lari papa nungai kat dera ni, papa dapat mama berapa?
1: As nungai roja ni ni, puning susang oi,
0: dari
1: puning sang jabani na, para supar roi.
0: Par roi.
1: Oh, eh kang ni.
0: Lari harus ikaw.
1: Harus ya.
0: Aina, anu buah hekara hai dia, aduga nang na, aina hari sih kecap mana nak kumuk ko. Hai bahu rakye, mana tau, aduga kumuk kedapa. Jagna
1: Jagna
0: ang duk
1: duk
0: lakri
1: lakri
0: katna
1: katna
0: amka haira une nang
1: jagna duk lakri katna chumrani ne
0: ang katna chume mathang sidi wahai pareng ni pungin changna mutau ko tu aata hai
1: tu aata hai
0: tu jata hai
1: tu jata hai
0: तू रोता है
1: तू रोता है
0: तू हंसता है
1: तू हंसता है
0: तू जगता है
1: तू जगता है
0: तू सोता है
1: तू सोता है
0: तू खाता है
1: तू खाता है
0: तू पीता है
1: तू पीता है
0: तू देखता है
1: तू देखता है
0: तू लिखता है
1: तू लिखता है
0: मथंग सिद्धि ना तुम हाइबती अर्थ दिने नंग हाइबनी को तुम हरीशी को
1: अदु दी ऐसु खंगी ना
0: ओह फरे फरे अदु ना तू हाइबगी वहाँ ही परिंग ना तबा को तुम हाइबगी यमु पारा के मुन्ना तारो अदु को खुमो को
1: होय ने
0: तुम आते हो
1: तुम आते हो
0: तुम जाते हो
1: तुम जाते हो
0: तुम रोते हो
1: तुम रोते हो
0: तुम हंसते हो
1: तुम हंसते हो
0: तुम जगते हो
1: तुम जगते हो
0: तुम सोते हो
1: तुम सोते हो
0: तुम खाते हो
1: तुम खाते हो
0: तुम लिखते हो
1: तुम लिखते हो
0: तुम आती हो
1: तुम आती हो
0: तुम रोती हो
1: तुम रोती हो
0: तुम हंसती हो
1: तुम हंसती हो
0: गुड मथंग दी ने थौगलोन याबा वही अमु हाय सिको यंगो अखोय मिवै बना इथा थोंग बसिंगुइ काय खमने सिबुनंखंग ब्र हा हाइदि आला माय खय युमदला एना खला सेब को मदुदा खय इमुंगि मि मना लाखपिरिबरा फिदा छमदलिंग छिनबियु कायना छुमायना थौगलोन याबा वही यसे हिंदी द करे हायगेबो आप हायरग सिजिनैबा को खुदम मोइना आप आती है आइना हारी सिनंग खंगद्रो
1: हां खंगनी निने
0: अदुरेती नंगा मोहायरो को आइना मुचुम रेयंग के
1: हाय निने अखोय मसे वरी सानब मतमदा नंग नहाक आइ महाक हाय बसे सिजने
0: सिजने
1: अदुगा इथक थोंबा इकाई खुमन बयाब मिसक सिंगदना अदोम हायबदी आप हाय बसे सिजनगनी
0: Yang baik le, very good. Aduh tu, kudam mama piu ne, cumbre yang.
1: Hoi ni ne, semake, cumbre yang piu ko.
0: Yang ke?
1: Tum sote ho,
0: good.

0: आप सोते हैं।
1: हाँ, वेरी गुड। चुमी चुमी अदुदे मथंग ममुंग लौदे सिको पुनिंग चंग नतारो को ngachai khoina mamang da pakhiba tu ti wahai paringi aroi bada sumaina lai habati he ho hey ana sumaina wahai paringi aroi bada lai ko wahai paringi ni yang si ko nanga khangna ba tu jata hai tum jate ho aap jate hai sumaina jata hai ragana he hai raga loi ba को जाते है रगना हो है रगलोई बा को आप जाते है रगना है है बा को शिखंगा दरा
0: खंगा नी नी ने
1: अदुते मथंग दा मुंग पार का तरु शिम्ता रो को नंग ना मुंग चप मना ना खुम का तबा को यानी को
0: हो यानी नी ने
1: पार के
0: तू आती है
1: आप आती है
0: आप आती है निने मथंगी
1: मथंगी से मुख पा रही को तू जाती है
0: तू जाती है
1: तुम जाती हो
0: तुम जाती हो
1: आप जाती है
0: आप जाती है
1: हाँ गुड अदुदी मथंगे मुहै रखे को तू रोती है
0: तू रोती है
1: आप रोती है
0: आप रोती है
1: तू हंसती है
0: तू हंसती है
1: तुम हंसती हो
0: तुम हंसती हो
1: आप हंसती है
0: आप हंसती है
1: तुम काम करता है
0: तुम काम करता है
1: अदो मोइन हे पापदा है हबसे है ना पापसी आवी को मखा है रखे ताओ तुम काम करती है
0: तुम काम करती है
1: तू फल खाता है
0: तू फल खाता है
1: तुम फल खाते हो
0: तुम फल खाते हो
1: आप फल खाते हैं
0: आप फल खाते हैं
1: तू फल खाती है
0: तू फल खाती है
1: एकोई न पारी बुवाही पर इंशिता खाता है बुवाही सिंचिना नुपा बुखंगना गनी को नुपा दा है बमतम्दा सिजनागनी अदुगा खाती है बवाही सिंह अछिना मु नुपी द है बवादा अमु सिजनागनी को खंगद्रा
0: ए मुहरकिनी ने
1: हरुने
0: खाता है बवाही सी अकारन लोमे
1: लोमी
0: अदुना मसिना नुपा ओइ बसिं बुखंगनागनी
1: खंगनागनी
0: अदुगा खाती है बवाही सिदना दिगै कारन लोमे अदुना नुपी ने है बखंगन बद सिजनागनी चुमरनि ने
1: नंग नि याम फजना बो हैरमिने याम कुब द खंगामिने चुमि चुमि याम चुमि वेरी गुड अदुदि मखाम लोग धरसिको मखा शिशु इमान मानैदा मथंग द पादरि शिशु अरुब याउते फरे उचारण छेंना न पक्कन होनो को उचारण हेक चुम दबता अर्थला न चखिदोइनी को तारो को
0: होय
1: तू चित्र देखता है
0: तू चित्र देखता है
1: हमका हाय गो तू चित्र देखता है
0: तू चित्र देखता है
1: तू चित्र देखती है
0: तू चित्र देखती है
1: तू चित्र देखती हो
0: तू चित्र देखती हो
1: तू लकड़ी काटता है
0: तू लकड़ी काटता है
1: आप लकड़ी काटते हैं
0: आप लकड़ी काटते हैं
1: तू चित्र देखती है
0: तू चित्र देखती है
1: तुम चित्र देखती हो
0: तुम चित्र देखती हो
1: वेरी गुड तुम लकड़ी काटती है
0: तुम लकड़ी काटती है
1: आप लकड़ी काटती है
0: आप लकड़ी काटती है
1: लकड़ी है बनी को मैं एक शब्द
0: दबा आप लकड़ी
1: काटती है
0: है
1: गुड गुड
0: निन्या मथंगी सिदी आठा हैंग दबने
1: वही परिंग मचाची की आठा हाई का दबने को अदुते ऐ हाई रखे नंग खुमचु खुमो को
0: है निन्या
1: हाई रखे ऐ ना हाई शिका माना ना खुमो को नंग चटली
0: नंग चटली
1: नंग तुमली
0: नंग तुमली
1: नंग नोकली
0: नंग नोकली
1: नंग चारी
0: नंग चारी
1: नंग पारी
0: नंग पारी
1: नंग ईरी
0: नंग ईरी
1: नंग चटली
0: नंग चटली
1: नंग कपली
0: नंग कपली
1: हाँ मतंग सिद्धि अहंग बम

0: भूख पीते हैं।
1: गुड अदगी मथंगसिदी अहानबदा अहांगब लैरे को अहांगब लैरगा फल खाती है मेलो
0: तुम फल खाती है
1: गुड अदै मथंगसिसु अहांगबा को अदुगा मथंगकी वाहिना कई वगेतेगी द लिखता है आ मेलो
0: तू लिखता है
1: गुड अमुक्सु अहांगबा लैरे अदुगा हो
0: अदुति तुम गाती हो
1: वेरी गुड वही खरे की उच्चारण सेंग ना चुम ना हाई बंग अम्र ना मुगी इंग छिको ऐ वही खरे हाई रखे नंग सु चप मन ना हाई रखा दब निको
0: हो नहीं ने हाई रखे
1: हाई रखे सन
0: सन
1: सल
0: सल
1: यांग ना हाई रखा दब नी शीना शार मशीन अमुक लुम ना हाई रखा दब शार
0: अदुति हाई बदन नुआई ये चप मन ना हाई दो पदों ना सुतोए बनान तारो का हाई सिरनी ने
1: नंगने हाई से हाई दो पदों खुन्तो मन ना ताई बनान तारो का हाई रदी के ना बखंग ने हाई ना त्रा बा खुदम अमनी दंगी इंची को
0: होई नी ने
1: आई कहाँ को बे यार रो आई कोई किसी दी खुन्जेल दंगी ने तादोरी से ईरा को उत्पय यारो हाई दी अरुम अयांगी ने बको अदुना ने ने ना वही खरा खंगल लगे अदुगा हाई रखे नंग ने आईना हाई दुगा चप मन ना खुम को मधुना फरनी छे आई हाई रखे को सार
0: सार
1: साल
0: साल
1: सेना
0: सेना
1: सिना अयांग बदा हाई निको अदुगा अरुम बगे मो हाई रखे शल
0: सल
1: सार
0: सार
1: साया
0: साया
1: सोम
0: सोम
1: यारे यारे वही खरा का मोहाई खिगे मछली
0: मछली
1: पछली
0: पछली
1: काच
0: काच
1: यारे निको
0: यानी नी ने
1: लोई ए नोई की परा छिसु यारे मतम छि यारे अदुना ngasi gi dilo chala chira
0: होइ नी ने लो चला से हे मु पासी को
1: पाची पाची

0: ꯎꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯗ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯁꯪꯁꯗꯅ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: ꯐꯤꯔꯁꯦ ꯀꯣꯏ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯀꯔꯅꯦ ꯋꯥꯂꯤ ꯒꯦꯡ देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बख्शा नहीं जाएगा ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है हम संसद में बिल लेकर के गए थे और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है काम आगे भी चलता रहेगा हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे इस विश्वास के साथ साथियों आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले
0: ꯁꯪꯁꯗꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ 2026 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒꯅꯤ ꯃꯥꯡꯅꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯦꯂꯦꯠ ꯒꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯥꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯖꯁ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯔꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯔꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯦꯂꯦꯠ ꯒꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜꯠ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯖꯦꯡꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯜ ꯇꯦꯂꯤꯒꯤ ꯇꯔꯥꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩꯃꯥꯊꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯦꯡꯒꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯃꯉꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯆꯥꯝꯃ ꯇꯔꯥ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯦꯟꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯍꯨꯝꯐꯨꯃꯉꯥ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯤꯔꯖ ꯆꯣꯄ꯭ꯔꯥ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯁꯕꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯖꯦꯕ꯭ꯂꯤꯟ ꯊ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯦꯔꯥ ꯑꯦꯊꯂꯤꯠꯁꯇ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯃꯍꯥꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯇꯤ ꯐꯣꯔꯇꯤ ꯁꯕꯦꯟ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯈꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯔꯐꯨꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯃꯥꯔꯇꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁꯔ ꯃꯟꯗꯦꯡꯕꯝ ꯖꯥꯗꯨꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯡꯈꯩꯃꯉꯥꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯅꯥꯃꯤꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯞ ꯍꯣꯁꯦꯞꯀ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯡꯈꯩꯃꯔꯤꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯔꯐꯨꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯑꯪꯀꯨꯁ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯡꯈꯩꯇꯔꯦꯠꯇ ꯖꯁꯃꯤꯟ ꯂꯝꯕꯣꯔꯤꯌꯥ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯑꯔꯨꯟꯙꯇꯤ ꯆꯧꯗꯨꯔꯤꯁꯨ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯂꯕꯂꯤꯅꯥ ꯕꯣꯔꯒꯣꯍꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯂꯣꯛꯂꯨꯞ KYKL ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝ ꯍꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯤ ꯈꯨꯂꯦꯟꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁꯇ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯥꯝꯃ ꯀꯨꯟ ꯔꯣꯝꯒ ꯐꯥꯈꯤ ꯕ꯭ꯔꯨꯛꯗꯦꯜ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯠꯊꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯀꯔꯝꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯅꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯠꯊꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌ ꯑꯦꯛꯇꯥ ꯗꯤꯕꯁ ꯄꯥꯂꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ IRB ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯆꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नगारंग पार्लियामेंट हाउस अरुणाचल प्रदेश अमसुंग नागालैंड की संसद सदस्य सिंह उनकरे सोशल मीडिया थाकप वारोल अमज श्री मोदी नाय उनब अदुदा राइज अनी असिदा हौजिक ओरिबा इसिंग इसौगी मतांग द वाफों क्या खनगी प्रधान मंत्री नाय इसिंग इसौगी अवाब माय नरिबा अदु थेननबा केंद्र सरकार ना मरी लेनबा राइज सिंह पुन थबक तौमिनगनी नसी फोंब पाउची सिंह की मरुएब पाउसिंग की दमक हौजिक ओक्रम उमादिनी लेरे उमादिनी
2: थागचेरी राजेश ngasi pausi singda phongna riba pausing gi headline amaga amaga manadre manipur gi petroleum transporter sing steering pipe leptuna khongjang sangsil lagani haiba pau asi tamenglong da phongba ganfiu mel amasung pokna pham sanalaibak naharol gi thaudang sangai express english edition gi ahanbe headline tauri pau asi manipur mel da anishuba headline tauri pau asi atai pauche singda su phongba thengnare UNC gi economic blockade leptana chathari kuki gi counter blockade chu chathari imphal da wari sanana ba UNC da lengak na matam tha khre haibasina sangai express manipuri edition gi ahan be headline tauri pau asi sangai express english amasung tamenglong times da anishuba headline tauri bilas guard hat khibagi thawongbu nagagi body singna yaning da ba phongdorakpa khawpum ps da case lokhatlam da ba mihat adugi matang da khongjang sangsin khibagi pau tamenglong times people's chronicle huyan lan pau gi ahan headline tauri pau asi pokna pham amasung naharol gi thaudang da anishuba headline taure नगाताबा मफम सिंगदा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना ऑपरेशन चथखिबा अदुबु यूएनसी ना यानिंगदाबा फोंगदोरकपगी पाव हिल्स होर्नबिल एक्सप्रेस ता अहन बे हेडलाइन तौरी पाव असी पीपल्स क्रॉनिकल दा अनिशुबे हेडलाइन तौरे मणिपुर गी अहनबा यूआईडीएआई आधार ऑफिस हांगदोखरे हाइबसिना मणिपुर मेल गी अहन बे हेडलाइन तौरी पाव असी अतै पावचे सिंगदासु फोंगब थेंगनारे चाइना ना एयरबेस अनीदा G20 फाइटर तरानिथोयरोम इंडिया गी ngamkhairom da onsinduna thamle haiba pau asina huyan lanpau gi anishuba headline oiri security na ngak senduna senapati tamna gari sing national highway 2 gi kangpok pida kuki singna lut tau khre haiba pau ama ganfiu mel gi anishuba headline oiri bitiang naga village da chathakiba etek adubu nwu na yaning da phongdorok pagi pau hills hornbill express gi anishuba headline oiri मिनिस्टर तरेट हाप्तबगी साउनरक्तनब एमएलए खरद डिपार्टमेंट सिंग यंगसिन्नब सिनरब्रा हाइबगी वहांग लाकली हाइब पाव अमसुंग मसिग मानब पाव पोक्नफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल गी अहानब लमाइद फोंगली मणिपुर गी पर्सन विद डिसएबिलिटीज की चाद यांखै यौना डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट पाइद्री हाइब सोशल वेलफेयर डायरेक्टर गी वफम अमा सना लैबाकी अहानब लमाइद फोंगली राजेश
0: थगचरी उमादिनी aroibida maroiba pau public examination prevention of unfair means amendment bill lisingani kuntaru sangsad na pass tokre pradhan mantri na hairi leba kasta miyam na thajaba parikha gi mo mato ama semnaba sarkar na lepa leitana thabak paikali sangsad na ngarang public examination prevention of unfair means amendment bill lisingani kuntaru pass tokiba adubu mukhyamantri yumnang khemchana singthani ngai oiba khongtang amani hairi amasung commonwealth games tangasi manipuri boxer mandengbam jadu mani singh kilogram 55 gi semi final chanar gani paulo jare

मखलमा थे कि थोड़म क्या संदोकतो न तहंजरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल लगी ने हाउसिक पुंफम वंसिदा मयांग की दमक पूर्दो न लाचरी मणिपुरी फिल्म मिसे कुदोल के हान बदा ताबिरसे बॉम ब्लास्ट फिल्म वंसिदगी पुष्परानी की खंजल दा नरेंद्र निगोंबना सेरिंग बा सगोल सेम तिजेंद्र ना सेरांग बैसे कुदोल तमजरी पुन्न तामिनसे

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मधंगी गीत की खुदोल दा लोबी रसी सुनीरी चौहान देगी गेदमा।

0: हेलो, हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मीरा।
0: गुड आफ्टरनून, कैन आई बी रबनो? हेलो ताबी ब्रा
1: ताजरिन कितन भी तब में ताये मीरा
0: होय होय अदो सोंगी खोंजेल से एंगोन दी यामना मरिक चुम ना मचा खाइने दी ताजरी मिंग लाइफ हम तंग खंग जगे
1: मिंग उनाम उनाम मेरा काय बिना दुने मीरा
0: बिना अंगसी दी करी वा फंग फंग तो पिगनी हाई बियो
1: कोई मेरा मुझे इनसे कैसे कि इसे इसे एक तो उन उन जगह रहा बाबा लाइफ पर निपुण
0: एकोगी युम्जा कैसा कुदिंगी थमजबा लाइफ ऑन इन प्रोग्राम
1: आओ इसे एकोगी फोन तोड़ा का खान बस
0: होय लाइफ ऑन इन प्रोग्राम आयुक तो ओइना ले जगह नहीं सी की युम्जा कैसा
1: एक तो इन्हें ले गया वो माले बा ऐसा एक तो दिखता ताहू तरबा दुगा नंग नंग वही ब्रांड खान dang tawa kan ni mesej sabi ruwa ta hai buko zum ta ba ada ai ta di ai sun thabai hang taw ri ngai de ka no ta hau ta bai ta re ko ad hang je ra ni me da
0: ikogi good afternoon ladies amadi good morning manipur sida adum ikogi han gi machat kum ko ta bining ba film sei gi thoram ase adum tham jari hai za bata re hoi hoi
1: adu madam
0: phong do bio
1: हेलो मैडम
0: हेलो ताबी ब्रा
1: तो ठीक मुझे ता मुझे मेरी चीज़ में ताई मुझे सुता था बा
0: होय होय आई ना दिता जरी वाफ़म फ़ोन तो पियो बिना कई दोग बीरा मिनो हो जिक्स बोरी दियो ताने ताने रेडियो दिता बा माय
1: कोई चाचा तो कम है तंग पता बोले मैडम ने और इस हाल जगह ना लजरम बने मैडम
0: होय होय
1: तातुक तंगारी
0: नसी की थम जकिरी बा रेडियो लीला ताबी रंगनी हाइना सुखंजे
1: कम तो बिखे
0: होय होय

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून, कनावे बिरा बनो
1: ताबीब्रा।
0: ताबीब्रा।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: ताबीब्रा। हेलो
1: मिरांग नताई कितांग लेका तिबेया
0: सोमगी खोंजेल से एंगोंदे दे दुकी पति मयेक सिंह ने ताजरी ताबीरब्रा।
1: कगा ताबे
0: होय होय वफम फुंदुक पियो।
1: मिरांग कनो कोजी नसी फ्राइडे नी दे ना पो मानगी नसीदा कोजी सेखम बगी पुलिन को गाम नावा जी थामी दे ना आदे की दिल आदे की जी थाम दे बके
0: हेलो
1: मिरा
0: हेलो ताबीब्रा।
1: ताजरे आई आई इन हाय बसी ताबी दे ब्रोने दाम
0: हेलो लाइबक थीबनी है खुगी कॉलर अमा वरी साने जरम लगा है जब तारे खुई नेटवर्क नंबर हम ओए गद्रा खुई खंजिल से तत क्रे या यारगदी अमुक हन कॉल ट्राई तो बिरखो है बवा फार्मेसी थप जके। हेलो हेलो ताबीरा ब्रा। हेलो

धन्यवाद यूरिका। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज शुक्रवार है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है मेजर साहब। आवाज़ दिया है अनुराधा पोतवाल और उदित नारायण ने। शब्द रचना देव कोहली के है और संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने।

दूसरा गाना पेश करते हैं ये वादा रहा फिल्म से, आवाज़ दिया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने, बोल गुलशन बावरा के है और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

तीसरा गाना प्रस्तुत करते हैं राजी फिल्म से। आवाजें दी है हर्षदीप कौर, शंकर महादेवन और बीवा श्रफ ने। शब्द रचना गुलजार के हैं और शुरू से पिरोया है शंकर एहसान लोई ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं सिम्बा फिल्म से आशीष कौर और राहत फतेह अली खां के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना रश्मि विराग के हैं और सुरों से पिरोया है तनिक्ष बागची ने।

पांचवा गाना पेश है देवनेगी और परोमा दास गुप्ता के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है गब्बर इज बैक। गीतकार है मनोज यादव और संगीतकार है चिरंतन भट्ट।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर पेश है दौर फिल्म से श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में गीत।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में, वो भी कंगला चैनल में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मखल मथल की थोड़ा कया संदोक तुने तहन जरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दिगिनी हाउजी गमुक पुंफम असिद पुदुने लाक्चरी तोंगान तोंगान बा मणिपुरी फिल्म मिसै सिंग मथंग मथंग होइना खुदोल गिहान बद ताबिरसी अहिंग ममई हाइरिब फिल्म असिदगी अफाव मदि माधुरी अनिगी खोंजिल द निमाई लेसांग थेमना सैरेंग बा सैरांग मना अफाव खुदोल दमजरी मया पुना तामिनसी